0: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର। ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के

0: 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी सिलिकॉन फैब्स डिस्प्ले कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है अभी 10 यूनिट लग चुके हैं उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं तीसरा इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है सकलेन अख्तर आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: ಅಂಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಜಗತ್ ಕೆ ನಾಥ್ ಕಹಿ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ರೂಪ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉನ್ಕೆ ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಔರ್ ಬಹನ್ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ಭವ್ಯ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೋಕರ್ ಶ್ರೀ ಮಂದಿರ್ ಸೆ ಲಗಭಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ್ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಿಚಾ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಮಾನ್ಯತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಮಂದಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಮೌಸಿ ಕಾ ಘರ್ ಹೈ, ಜಹಾ ತೀನೋ ದೇವತಾ 9 ದಿನೋ ತಕ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ವೆ ದೋಬಾರಾ ಮಂದಿರ್ ಲೌಟತೆ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಪಾಹಂಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ್ ಸೆ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಮೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಭಜನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಔರ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿ ರಿವಾಜೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ತೀನೋ ವಿಗ್ರಹೋ ಕೋ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಕರಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಲಾಖೋ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ರಸ್ಸಿಯೋ ಸೆ ರಥ ಖೀಚತೆ ಹೈ, ಜಿಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಔರ್ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಗರ ಭ್ರಮಣ ಕೋ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದರ್ಶನ್ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇನೆ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ.
1: ಲೀಲಾ ಚಲ್ವಾ ರೇ ತೂ ನ ಸಂಭಾಲೆ ತೋ ಹಮೇ ಕೌನ್ ಸಂಭಾಲೆ.
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है.
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे. पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे. फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार.
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है.
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा.
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया. रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं. दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा. इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी. आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा. मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे. भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा. मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया. एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है. 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी. अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं. आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमीकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथ पुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet clears 2 elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved two elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometres between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43 kilometre long, six-lane

0: परिक्रमा करिबे चतुर्पाश्व रथर चतुर्पाश्वकु परिक्रमा करिबे कारण उत्सव एठारु आरंभ होला जो उत्सव आरंभ करिसंती कालिया ठाकुर नित्य उत्सवम नित्य सत्यम नित्य श्री नित्य मंगलम विहार्जित जगन्नाथ श्री वैकुंठ पुराधीप ये क्षेत्र हे परम पावन क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कैबल्यर क्षेत्र मुक्तिर क्षेत्र भक्तिर क्षेत्र से भक्तिर भावरस को अधिकर अधिक प्लावित करिबा पाई सुदर्शन महाप्रभु वर्तमान सेवक मान जो दैतापति सेवक विश्वावास वंशधर बोली बोली जहाँ को कह जाए से दैतापति सेवक मानकर स्कंधारूढ़ है वर्तमान आसुचंती आ रथ बलभद्रक रथ सम्मुख देवी सुभद्रा रथ सम्मुख वर्तमान नंदी घोषर रथर परिक्रमा कर आसबे एवं माँ सुभद्रा रथ रे शक्ति सहित शक्ति संजोगी किरण हे ये हूँ से सुदर्शन महाप्रभु जी वर्षकरे आहुरी चारिथर मध्य मंदिर बाहर को आसी थांती गम्हा पूर्णिमारे मार्कंड पुष्करणी के आसंती राधाष्टमी रे जम्मेश्वर मंदिर को आसंती कुमार पूर्णिमारे अंगिरा आश्रम को आसंती आउ आज हूँ से रथयात्रा जो रथयात्रा पति तपावनकर यात्रा रे भक्त सहित भगवान मिलनर प्रथम सेतु भाव में वर्तमान सुदर्शन महाप्रभु आदर्शन महाजल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानी ना मुख्य दायक ए भक्त मान भितर समस्त अज्ञान को परिहित करी समस्त अज्ञान को दूरीभूत करी तांको भितरे भक्तिर भावना को अधिकर अधिक तीव्र करिबा पई सुदर्शन महाप्रभु आसुछंती आउ आज से चक्र आकार नहंती से स्तंभ आकार तुलसी लागी होइछि राघव दास मठर प्रदत्त जो तुलसी जो टोपर महाप्रभु लागी है सुंदर भाव आसुछंती देश परिपाटी चलिछंती दैता सेवक माने घंटुआ माने चलिछंती नृत्यांगना माने नृत्य रे आनंद होछंती शैलकलार ठाकुर पाखे नृत्य करी समर्पित करी तांकर से कला को प्रदर्शित करी तांक पाखे से समर्पित हो जाउछंती परम ब्रह्म विष्णु आयुध जे स्नान पंडप रत्न सिंहासन जगन्नाथ वाम पार्श्वरे रही थांती किंतु आज माँ देवी सुभद्रा सहित शक्ति सहित जोग माया सहित संजोग ही सुदर्शन महाप्रभु रथारूढ़ हेबे एवं बाहुड़े से कर्मवेद जन्म वेदी को जन्मवेदर यात्रा ये हूँ दश अवतार यात्रा ये हूँ पतित पावन यात्रा भावबंधनर यात्रा भावबोधी बांधी हो संसार समस्त प्राणी दुख कष्ट को दूर करी तांकर मन भितर थिबा ज्ञान को दूर करी पाप को मोचन करी मुख्य दवा निमंते हूँ मुख्यर क्षेत्र मुक्तिर क्षेत्र से मुक्तिर क्षेत्र चारमाल ये चारमाल नुहे भक्त मानकर हृदय से द्वार जो हृदय द्वार को उन्मुक्त करी वर्तमान माँ सुभद्रा जो दर्प दलन रथ जहाँ को कि मध्य कहुए पद्मध्वज रथ से रथर से कोलमंडन करने को सुदर्शन महाप्रभु विजय कर दईता सेवक माने रथ चारमाल अग्रसर होती आ घंटुआ माने तांकर घंट को एठारे विराम दे पुणी चल चली जाउछंती सिंहद्वार दे से बाईस पहाच दे प्रभु निकट रे कारण आसुछंती परा बलियार भुज आउ यहा पूर्वर मुझे चाहिबी जे कलश जो तीन गोटी स्थापना करा जाउथिला कोठ सुआसिया सेवक माने रथ प्रतिष्ठा करी आसीबा परे जो तीन गोटी कलश सेठी स्थापना कले जगन्नाथ जो कलश तीन गोटी ताला नभ आकाश एवं व्योम एवं जो पताकाटी लगेले ताला त्रैलोक्य मोहिनी पताका तीन भुवन को मोहित करी से पताका मोहित करिबा पई तांकर पताकाटी रहिला एवं बलभद्र रथर जो तीनो कलश रहिले ताहले चंद्र सूर्य एवं विद्युत एवं तांकर पताका बा नेतर नाम होची त्रिपुर सुंदरी तीन भुवनर जो सुंदर प्रतीक कारण प्रकृति सहित पुरुषर मिलन को ताहाकु से करिबा पई आउ सुभद्रांकर रथरे जो तीनो कलश रहिला ताहाला परा अपरा बैखारी एवं नेतर नाम होची नादंबिका माँ सुभद्रा तेबे चलंतु आमे पुणी नै जाउछु जगन्नाथंकर सेई श्रीमंदिर कार्यालय निकटरे आमर थिबा द्वितीय बूथ केन्द्र को जोठी अपेक्षा करिछंती भाव विहळता हई मनर भाव को परिप्रकाश करी आपन मान को पाखरे ए बड़ दांडर दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव रे वर्णना करबा पई डॉक्टर हरिहर कानुंग महोदयंग निकट को जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ सुंदर भाव में वर्णना करुले कल्याणी जे वर्तमान आयुध पुरुष चक्रराज सुदर्शन महाप्रभु से जो दिव्य ज्ञान जो रॉकेट बोली आम कहे आधुनिक जुगर रॉकेट बोली आम जहाँ कहे से रॉकेट आसिक आपणकर जगज्जननी कृपामयी माँ सुभद्रा ठाकुराणी दर्पदलन रथ विराजमान कले कारण आपण मैंने जानती जे मसटा हूँ आषाढ़ मास आषाढ़ मास हूँ सृष्टिर मास सृष्टि प्रक्रिया को आगे नवापाई महाप्रभु भाई भौणी को धरी रथजात्र गुंडीचा जात्र पतित पावन जात्र नौ दिन पर यात्रा करुंबं जोबले पुरुष आयुध पुरुष जे कि चक्रराज जे कि श्रीमंदिर भितरे भगवान जगन्नाथंकर बाम पटरे शोभा पाती चक्र रूप से आपण देखिए द्वापर जुगरे भगवान नीलामय कृष्णंकर डाण हाथर विशी आंगुठे शोभा पाते चक्रराज सुदर्शन चक्राकृति सुदर्शन चक्रभली सुदर्शन जो चक्र एमुंडर काटिक जाऊला से मुंड को से मुंडर काटिकाटिक आसला एमुंड को जहाँ देखी बेलासन से चक्र कली जुगरे भिन्न एटी महाप्रभु धर्मदंड धरी कारण जो अवतार कथा आलोचना कर दूसरा भगवान कली जुगरे धर्मर दंड धारण कर कौ धर्म कर्म भित्तिक धर्म जो कर्म करने जीवर जीव यही मृत्यु जन्म नहीं से केवल कर्म ही कर से कर्म हो सत्कर्म उचित कर्म जो कर्मर फल मनीष लाभ कर तेणु आम जो आलोचना प्रसंगे कहते जे मनीष कोटि कोटि टंका रोजगार कले मला बेलू को टाटे जापरना तार कारण हूँ केवल तुम कर्म कर कर्मर फल भगवान जगन्नाथों ऊपर छाड़देक पड़ो जहाँ गीतार कहला कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेश कदाचन धीरे धीरे आम जो बसीचु श्रीमंदिर कार्यालय तार बाँ पटे बर्तमान जो बड़दाण्ड रही बड़दाण्ड लोकारण्य एवं वर्षा सत्वे छता धरिकी समस्ते आसी कारण महाप्रभु जगन्नाथों प्रति जो श्रद्धा भक्ति विश्वास कारण मूलटी अटई विश्वास कह जगन्नाथ दास भगवान को पाइबा को हेले भितरे विश्वास रखा पड़ो विश्वास न रखिले किछि पाई पारिबो नाही कली जुगर प्रत्येक मनीष भितर आज राजूति करुची अविश्वास अंधविश्वास तेणु अविश्वास अंधविश्वास भितर भगवान मिलिबे नाही भगवान को पाइबा को हेले भक्तटी होबा पड़ो भाव भक्तिर डोरी रे भक्तटी हेकि आमे भगवान को प्रार्थना कले दुई हाथ टेकिक प्रार्थना कले भगवान आमको देवे कारण सी होती भक्तर भगवान अभक्तर भगवान नुहंती जे अविश्वास सन्देह भितर भगवान को डाके से केवे गुरुत्व दिए ना तेणु वर्तमान पाग अनुकूल धीरे धीरे आकाश मेघमुक्त होबार लगी धीरे धीरे श्रद्धा भक्त मानकर माने सुअ छुटबार लगी आम बाँ पटे आम देखु राज नर को लगिक जो बारिकेड भाया कर पुलिस बाहन जगिक रही आम देखु बर्तमान भिड़ धीरे धीरे बढ़वार लगी ये सब प्रभुंर लीला भगवान लीला कारण आम भावुले जे सका जो प्रकार पाग हो कौन नहीं कौन हो देखु गोटे मुहूर्त भितर सब बदली जाऊँगी समय बड़ बलवान यही समय क्या केतबले कौटी नहीं रखिब कौ जगार पहुँचेब कही कहीपारे ना आज्ञा ये समय को नियंत्रण करुंट दुईटी देवता जड़े जगतनाथ जगन्नाथ आउ जड़े लोकनाथ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯିଏ ଯୋଗୁଆଳି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିଏ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ନାଥ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଜଗତ ବଡ଼, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିରୁ ହାତେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲି, ବିଶ୍ୱାସର ବାଲି। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଓଲଟ ଶୁଆ ଯେଉଁ ରଥରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ପରମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଜୀବ ପରମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ, ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ମହାମିଳନର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ମୁକ୍ତିମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଭକ୍ତଟିଏ ଧାଇଁ ଆସୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛି, କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି, ତାର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା, ତାର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା, ଯଦି ତାହା ପୂରଣ ହେଉନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଦୂରକୁ କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ହେ ଜଗତର ଠାକୁର, ତୁମେ ସବୁ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର। ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ସୁଧାରି ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଭକ୍ତ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲି ଆସୁଛ। ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଚାର କ'ଣ ହେଇପାରେ? କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦେବତା ଆସନ୍ତି, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଦେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଆମେ ପାଇଛେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ମଣିଷ ହତାଦର କରିଚାଲିଛି, ନିଜକୁ ହତାଦର କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କେଉଁଠି ସେ ଭୁଲ କରିଛି, କେଉଁଠି ସେ ପାପ କରିଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଯିଏକି ଆୟୁଧ ପୁରୁଷ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ କଲେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ହଲି ହଲି ଝୁଲି ଝୁଲି କାଦମ୍ବରୀ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ହଳ ମୁଷଳ ଧାରି, ଯେଉଁ ହଳ ମୁଷଳ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ, କୃଷିର ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ଆସିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆସିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଆସିବେ, ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଆସିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା। ଆସିଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବେ, ଗଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରିକୁ ବିଜେ କରିବେ, ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଇଏ ପରମ୍ପରା, ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଏ ଯାତ୍ରାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏ ଯାତ୍ରା ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା, ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେଗ କହିଥିଲେ, ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ, କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ଗିରିବର ତୋଳିଆକୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବିଚାରଧାରା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର

जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास ओ भक्तिरे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। एही पवित्र रथयात्रा अवसर रे भक्तमानंकर सुस्थता ओ सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्तंकर दायित्व। सेइथिपाई खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होबा अत्यंत जरूरी। एही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव रे तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो। जेमितिकि तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोल में बिक्री होउथुबा खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होउथुबा खाद्य, माछि बसुथुबा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदौ खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच होबा परे निज हाथ को साबुन ने भल भाव धुअंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबा आवश्यक।

0: Centralized Receipt and Processing Center, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh, 160017 ठिकणारे डाकद्वारा पठाई अभियोग दाखल करिपारिबे
1: मने रखंतु सीधा सडक भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्बुड्समैन को निकट रे दाखल होइतिबा अभियोग प्रत्यक्षन हेबार संभावना अछि
0: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी
2: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे
3: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनंक जणाउछि असुमारी शुभेच्छा एहि शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मां मानंक हात तयारी हस्ततंत हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर अपूर्व संभार पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजारे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपणंक अपेक्षारे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर
4: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्रीनी चोर तुंग श्रृंग बिहरन मातंगी भंगी भृत दुदेवी ततप्ता प्रतप्त मन साम कादम्बिनी कंदल पादम भरु हरुक्त भक्त जनतम कारुण्य पातो निधि यः स्वयं जगदीशरं वितानुतां श्रेयांसि ब्रूयांसि वः एहि आम बड़दाण्ड बड़ ठाकुरंकर विजयस्थळी बलियार भुजंकर से बड़दाण्ड से सिंह द्वार गुमुट भितर आम देखिपु से आसुंच पहंडी होई हली हली झुली झुली बाईसी पाच दे घंटुआंकर घंट घंटर से नादर ताले ताले हरिबल हुलहुली रे गगन पवन प्रकंपित होई उठुचंती आदि द्वादश जात्रार श्रेष्ठ जात्रा रथ जात्रा अनुष्ठित होउचंती जहां को कि बार मासरे तेरो जात्रा लगाई अछंती जगतर नाथ पतित जनक उद्धार निमंते नाना उत्सव नीलासी इला भितरे श्रीलगिरी शिखरे हरि द्वादश जात्रा विनोदे स्नान गुंडीचा अयन शयन पारस पालट मोदे देव उत्थापन मकर ओढ़ण दोल दमनक चरी चंदन चंपक उत्सव सहित ए विधिला विस्तारी ए विधिला को अनुष्ठित करी बलियार भुज आज आसुचंती घंटुआ मानंकर उद्घोषण रे अपेक्षा करिछंती अरुण स्तंभ निकटरे अनेक श्रद्धालु नृत्यांगना माने अपेक्षा करिछंती मठर मठाधीश माने आलोड चालुछि चामर चालुछि हुळहुळी रे समस्त भक्त मानंकर स्वर एक स्वर रे उच्च स्वर रे उच्चारित हेउछंती हरिबल हुळहुळी सहित आउ आमे देखि पारुछु वर्षा टिकिए टिकिए हेरे मध्य भूर्खेप नाही वर्षा को कहीं भगवान को सहित भक्तर मिलनर यात्रा एक वर्ष पर प्रभु आसी सिंह द्वार से गुमुट दे रथारूढ़ हेबे एवं चलीजे से कर्मभूमि जन्म बेदी को जो माँ अपेक्षा करणी गुंडीचा कथा दे आसबि निश्चय आसबि बर दे माता से जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीअसी प्रभु आपणार करे बंधु मानू आज क्रम नये आसी आम देखुचु नीला जो निया हुड़ा बनाटी चली प्रस्तुत होती जड़े सेवक तार जो हुड़ा बनाटी मध्यम निआं को संजोग कर प्रभु निकट में पूरीर उत्कलीय समर कलार निखुण दर्शन प्रदर्शित करे प्रभु निकट में कारण जितेबले विभिन्न समय उत्कल को मोगल मान विदेशी मान आक्रमण होता से समय छाउणी मठ जहाँ समर कलार पूरापल्ली श्रीक्षेत्र जुव भेंडिया मान को जो समर कलार शिक्षा देते जहाँफल जगन्नाथ को विदेशी आक्रमण रक्षा करा से कालिया ठाकुर से बलिया ठाकुर आज साम्य मैत्री प्रीतिर बार्ता नहीं भक्त सहित भगवान मिलनर जात्रा भाव भक्तिर जात्रे आज छुट्टी आसुचंती बड़दाण्डर अपेक्षा करिथिबा से नंदी घस ताल ध्वज दर्प दलन तीन गोटे रथ से रथारूढ़ सेवक माने टाणी ने आम देखीलु किसी समय पूर्व श्रोता बंधु खाली रथ को प्रतिष्ठा करा जाए नथिला रथ उपरे पानी सिंचन करा जाए नथिला।

0: महोदय कहुतले जे आमे संसार रे केमति पतित हो जाइछु तेणु कौन कहा जाए ना संसार ना दुख दल दु से गोटे कथा हाँ ना ना जेनो द्रुतमिदं विष्णुं तस्मै श्री गुरवे नमः तेणु जो माने संसार वृक्ष रे चढ़ी संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकार नवे जेनो द्रुतमिदं विष्णुं तस्मै श्री गुरवे नमः से जगत गुरु श्रीकृष्ण महाप्रभु श्री जगन्नाथ भितरे जो शक्ति सामर्थ्य अच्छी सी आम संसार रे आम जो संसार वृक्ष को चढ़ीकरी आल्ले पारने संसार अर्णवरे आम पड़ जाऊे से आमको रक्षा करने से गुरु प्रतिम एवं सी आमको से उद्धार करे शोषण सर्वपंकानाम नीलाद्री शरणम हरि तेणु सर्वपंक को जिते कलमश जिते पाप पंक लिप्त होकर आम अच्छे से सब पंक कोदेव स्कंदपुराण गोटे वर्णना करना कंक्रीट हो गला बड़दाण्ड से बड़दाण्ड पंकिल जितेबाला कादुआ गुंडीचा होता ए कादुआ मानक रथ लगुला और से कादुआ पंक लोक मैंने चलुले स्कंदपुराण कहते से पंक सामान्य पंक नुह से पंक को मुंडरे लगाओ से पंक को मुंडरे लगेले तुमर जन्म जन्म संचित पाप पंक से धोई हो जीव एक स्कंदपुराण उक्ति तापर कौन कह बरदं सर्वभोगी नाम तेणु समस्त भोगी मानकर भुक्ति मुक्ति प्रदायक बोली महाप्रभु को कह जाए सी भुक्ति भी दे पारती मुक्ति भी दे पारती भुक्ति कौन जाणी दरकार श्रोता बंधु मुक्ति कौन जाणी दरकार भुक्ति माने आम संसार को आसीचे आम रक्तमांसर शरीर अच्छी आमर लोभ मोह ये सब गुण सब आम भितर अच्छी या को आम दुर्गुण बोली कहीकि एड़ेदेले हम ना आम संसार कि भोगर कामना अच्छी भगवान जानती जे ये संसारी लोक मानकर भोग कामना परितृप्त नहले से माने मुख्य आड़ को जीवे ना तेणु से आमर समस्त भोग बासना कामना को मध्य पूर्ण करती जहाँ को कह जाए भुक्ति तेणु भुक्ति हेले जितेबले कामना बासना पूरण हो जाते मनीष से मुक्ति चाहिए तेणु भगवान ये शक्ति अच्छी जे से भुक्ति भी दिखती मुक्ति भी दिखती तेणु यो कथा शेष कथाटी है तरणं भव भारी बारिधे तेणु भव सागर तारण कारण है बोली जो गुरु वंदन आम कहू तेणु भव सागर रु तारण करने भव सागर एत व्याप्त आपत देखुं पुरी में महोदधी को महोदधी अपर पार्श्व आम देखिपे कौटी तार तीर अच्छे आमको जाना ना तेणु से जो तीर दिशुन महोदधी से महोदधी भितर जदि आम पहरा नजा पशिजा आमर जहाँ अवस्था हम ये संसार पहरा नजा संसार सगर में आम पतित होकर जो चित्कार करूचे करुण चित्कार करूचे से चित्कार महाप्रभुंर कर्ण कोहर में जो पड़ महाप्रभु करुणार्द्र होजे करुणार विगलित होकर आमको ये भवसागर रु तारण करने महाप्रभु आमको सहायक हे तेणु यही सबू आठटी कारण जोटा कहगला जोटा स्कंदपुराण महाप्रभुंर महिमा भाव में वर्णना कर सबू कारण गुड़िक एकत्रित होती महाप्रभु आमपाई एत मात्रा रे अनन्य एवं महाप्रभु आमपाई एत मात्रा रे प्रणम्य तेणु महाप्रभुंर से पवित्र पावन जात्रा रे काहीकि महाप्रभु आसुना गुमुट भितर अटकी रही घंट घंटा मध्य बंद हो जाऊँगी घंट घंटार शब्द आम शुणुना कौन होमें जाणिना आमको भी जना पड़ूना तार कारण किंतु महाप्रभु आसवर सूचना तो आपन को आम देलु हे तो बारटा है वर्तमान आउ अध घंटा भितर महाप्रभु आसिक नंदीघोष आरूढ़ हे माइक्रोफोन धरवापी डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय को अनुरोध कर
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज बड़दाण्डे अपूर्व शोभा गत काली शोभा ना आज भक्त एवं भगवान मिलनर महामहोत्सव तेणु महामहोत्सव आज समस्ते एकत्रित होचे एवं आमे देखि सारे ये बड़देऊ भितरे विराजमान करथिबा बड़देऊर बड़ खाउंद श्री बलभद्र भगवान से तालध्वज रथरे विजय कर सारे देवी सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन से मध्य दर्पदलन रथ को मंडन कर सारे आउ जणे केवल अपेक्षा कर नंदीघोष रथ केतेबले महाप्रभु आसीबे एवं महाप्रभुंकर महाप्रभु बड़देऊ प्राय छाड़ी सारे एवं ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି ସେ ହେଇଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଯାଇ ବେଦ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ ଶୂନ୍ୟ। ଆଜି ବଡ଼ଦେଉଳ ହେଲାଣି ଶୂନ୍ୟ। ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଆଜି ମା ଚାହିଁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଉଠିକରି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଦେବୀ କିଛି କୁହାବଲା ନାହିଁ, ନ କହି ସେବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ରଥ ଚଢ଼ିକିରି ପଳଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା।
0: ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଦେ କହିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଲେ ନାହିଁ
1: ଆଜ୍ଞା,
0: ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ
1: ଦେଲେ।
0: ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ନାରୀ,
1: ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ନାରୀ।
0: ନାରୀର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ନାରୀର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତାର ମନୋଭାବ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ନ କହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ମୁଁ କରିବି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ରାଗିକିରି ନ ଚାହିଁକିରି ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଟା କ'ଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଘରୁ ଯିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେବି ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, 10 ଦିନ 12 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ତ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମହିମା, ଏଇ ମହିମାଟି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ବିଦା କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ନ କହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଧରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନକରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କମ୍ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ।
1: ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ, ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯାହା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ନରଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହଟି ହେଉଛି ଦାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ

0: ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ମୋଟା ମଲାଟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକ ମୃଦୁ ଆଘାତ ଦେବ, କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଇପାରିବନି। ଏଇଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଇଠି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ କି? ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନାଚାର, ତେଣୁ ନିଜର ବଳ ଖଟେଇକିରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାହିତ ହେବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଥକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯଦିଓ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଆଲୋକ ଅଛି, ବର୍ଷା ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉନି। ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟାଣି ହୋଇକରି ଆଗକୁ ଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
1: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ ଏଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗଢ଼ିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ, ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଭରପୁର। ଆମର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପାଖରେ ଗହଳି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ରଥ ଟଣା କେମିତି ହେବ, ରଥ ଟଣା କେମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା? ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜନସମୁଦ୍ର, ମୁଣ୍ଡମାଳ, ଥାଳି ମାରିଦେଲେ ଥାଳି ଚାଲିଯିବ। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ! ଆଜି ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଥ ଟାଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ରାଜନଅର ଦେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଜନତା, କେହି ଆଉ ଅଟକିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଟଣା ହେବ କେମିତି? ମାତ୍ର 20-30 ଫୁଟ ଆସିଛି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ଯଦି ଲୋକ ଗହଳି ଏଇଭଳି ଚାଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ? ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯେଉଁ 15,000 ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ସୁଅ ଭଳି, ନଈର ସୁଅ ଭଳି ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଟକେଇବ କିଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଯେଉଁ ବିଚାର, ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ସତରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର, ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଛେରା ପହଁରା ସାରି ରାଜନଗରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼, ଏ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼, ଏ ଅସମ୍ଭାଳ, ଏ ଭିଡ଼କୁ ରୋକା ନଗଲେ ଆଗକୁ ରଥ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ରଥ ଅମିନ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ,
0: ଡକ୍ଟର କାନୁନଙ୍କ
1: ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ
0: ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, 15,000 ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସେ ଡିଜିଙ୍କ ଠାରୁ
1: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
0: ଭାଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି
1: ଆଜ୍ଞା,
0: କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 15,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ 15,000 ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ?
2: ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ
0: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତ ପ୍ରାଣପଣେ, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ସକାଳ 4:00 ରାତିରୁ ଆସିକିରି ଭୋରରୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାହାର ବୟସ 55 ହେଲାଣି, ସବୁ ଅବସର ସମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟର ସୀମା ନାହିଁ। ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଏଡିଜି ପୋଲିସ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏମାନେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ବୁଡ଼ିକିରି ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ତା ସହିତ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 15,000 ପୋଲିସ ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇକରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମାପନର ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଚକଡ଼ାରେ ଆଉ 2 ରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ରଥ ଚକଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ଆମେ ରେଡିଓରେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି 500ରୁ ଅଧିକ ହବ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଯେଉଁମାନେ ରଥକୁ କଡନ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଆଲୋକ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଠିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ ଏଥର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏଠିକାର କଥା କିଛି କହିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସେଇଠିକାର ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ
1: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସିନା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ 3 ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେବ କିଏ ଖାଲି କ'ଣ DG ଏବଂ ADG SP ମାନେ ନେଇପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନା ଟାଣିକିରି ଆଗକୁ ନେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଭେଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଠିଆ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା କେମିତି ମୁଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁବି କେମିତି ମୁଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତାପ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
2: ଆମେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଫେରିବା ସମୟ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଡେଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀନଗର ଗଲେ ତା'ର 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଏମିତି ମୁକୁଳା ରହିଗଲା ବା ଅବହେଳା କେଉଁଠି ରହିଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଜନସମୁଦ୍ର ରଥତ୍ରୟ ନିକଟକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ ଯଦି ରଥତ୍ରୟ ନିକଟକୁ ଆଗରୁ ପଛରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଘେରିଯିବେ ତେବେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ରହିବାର ଜାଗା କେଉଁଠି ରହିବ ଏବଂ ରଥ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିବାର ଜାଗା ନ ପାଇଲେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନ ପାଇଲେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବିକଳ ଲାଗୁଛି ଇଏ ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ତ ଲୀଳା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଥର ଅମିନ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାହୁକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି आमे आशा करूचु महाप्रभु आमे कर चरण कृतंग बा कायजंग कर्मजंग बा श्रवण नयनजंग बा मानसंग बा अपराधम विहित मविहितंग बा सर्वमेतदक्षमस्व जय जय करुणार्धे श्री महादेव शंभु। हे प्रभु, हे महारुद्र, हे अतिरुद्र, हे बड़ ठाकुर बड़वाड़ सामंत बलियार भुज श्री श्री बलदेव महाप्रभु, तुम्हें आग को आसी जाओ। जन्मभूमि को तुमर जो गमन ताहा निश्चित हो जाऊ एवं भक्त माने मध्य तुमको श्रद्धारे भक्तिरे आग को नहीं जीवे। तुम्हें टिके एड़ी तुमर रुद्र रूप को प्रकाशित कर भक्तों भितरे से चेतना से भावनार आसु। माँ सरस्वती को आम प्रार्थना करुचु, हे बीणा पाणी तुम्हें सब भक्तों भितरे से प्रकार चेतना दि। महाप्रभु कृपा दृष्टि सब भक्तों पर रही एवं हे श्रद्धालु माने भक्त भगवान यो दिव्य लीला ए दिव्य लीला भितरे विश्व ब्रह्मांड ए लीला को दर्शन करुची। केते व्यग्रह जाति केते सही पारुना भगवान तार दूरता को सही पारुना तेणु बुझे समस्ते पुणी बुझे एवं महाप्रभु को आणवे। ये हूँ घोष यात्रार एक प्रमुख समय जेतेबले पवित्र दौड़ी को बासुकी स्वर्णचूड़ शंखचूड़ ए रथत्रयर यो नाग समूह ये दौड़ी ए रथ दौड़ी को स्पर्श करदे समस्त विष देहर ओल्लै जाए बोली आमर कथित अच्छी आम परंपरा आमको कहती। तेणु यही रथ दौड़ी को धरी महाप्रभु को बाही नेबा महाप्रभु को टाणी नेबा जो महाप्रभु ये जगत को कल्याण करुछंती जो महाप्रभु ये जगतर कथा को बुझुचंती जी समस्त को चलनक्षम करउचंती अचल को सचल करउचंती। आमे जेतेबेले आमर शारीरिक अक्षमता हो जाए आमे महाप्रभु पाखे शरण पशु नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईसवे नमः बाहुभ्या मुतते नमः। तेणु से महाप्रभु को आमे पुणी टाणीबार ये हूँ भक्त भगवान एक दिव्य लीलार एक परिवेश। वर्तमान आलोक माला सबू जली उठिला सिंहद्वार चकड़ा उपरे चतुर्पार्श्वर जहाँ आउ टे सुविधा करेब कहीं धीरे धीरे अंधकार परिवेश आसी जाऊँगी आउ वर्षा शीत आकाश निर्मल हो जाइए। महाप्रभु बलदेव यही रथटणार परिवेश भितर तेणु समस्त आशीर्वाद से जो महाप्रभुंर आशीर्वाद समस्त को प्राप्त एवं से सारथी जी अच्छा मतली से महाप्रभु रथ को बाही निंतु यही प्रार्थना हस्त जोड़पूर्वक।
3: बर्तमान जो भाई पिस्थित है आम कौन प्रभु प्रार्थना करवा हे महाप्रभु हे बलियार भुज हे बड़ ठाकुर तुम्हें ही तुम नियंत्रण करता कहीं भक्त तो तुमको देखापी पगल तुम रथ दौड़ी छुईवाप पगल तुम रथ दौड़ी टाणीप पगल यही परिस्थिति कौन कर विषय किसी मत
2: मंत्री जन्माष्टमी राति भगवान कृष्ण जन्म हो जेपरी निजे गले जमुना पारी होई एवं बड़ भाई बलदेव को संकर्षण को पुनर्बार जो आसवर जो व्यवस्था तेणु निज को तोते ही तुही रक्षा कर मुछार मनुष्य मातर यही भाव बाजिराणी वीर काहाली एवं पताका देखाई जे अच्छा रथर अमीन आग को महाप्रभु
3: प्रकंपित होउची बड़ दंड चारिआड़े जनसमुद्र जुआड़े देखिए खाली मुंडमाल प्रभु तुम्हें आग को आग मारिआस प्रभु चरई बेती तुम्हें तो प्रत्येक जीव को कौच जे तुम मारी चल आग को मारी चलवा हूँ धर्म तुम रथ आग को जीव तुम्हें तो कर्मभूमि जन्मभूमि को जीव जीवा हूँ तुम धर्म ए संसार दंड रे तुम रथ चलू भक्त मैंने चलतु आज रथ पथ एकाकार यही भावना यही ज्ञान आज समस्त भितर जाग्रत होती।
2: त्रय सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यस्तोमसि पयसामर्णव इव समस्त नदी माने जेपरी समुद्र जाई मिसी जानती सेहीपरी आजिर जो उत्कंठा रही भक्त समूह भितरे हे महाप्रभु तुम्हें जन्मवेदीर से ही गुंडीचा मंदिर ना सिंहद्वार तुम्हें पहुँची जाओ अनेक पथ अनेक मत किंतु सारांश बा शेषांश हेउची से ही जन्मवेदी को महाप्रभु पहुँचवा शेषांश हेउची नदी माने समुद्र रे मिसी जीवा
3: प्रताप बाबू बर्तमान जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलभद्र देवी सुभद्रा प्रति भक्त मानकर एत आकर्षण कहीं कौन ता भितर अच्छी जहाँफल कि लोक मैंने माड़ जाऊँगी चुंबक जमी लुहा को टाणे माड़ जाऊँ जहाँ बब
2: ये
3: पे मरबू कि आम दौड़ी
2: छुईबू ये जन्म जन्मांतर संपर्क ये आज गोटे थर नुह अनेक जन्म धरी सी देखी
3: भक्त मान टाणुचार बलभद्र तालध्वज रथ घोर घर घर नाद से चतुर्दिग प्रकंपित कर श्रद्धा भक्त मान गहन आग को माड़ चलुची धन्य प्रभु धन्य तुम महिमा धन्य तुम ये करामती तुम्हें सतरे कलीजुगर ठाकुर कलीजुगर स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन एवं जो त्रिताप कथा कहते आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक यही त्रितापुर सकल जीवजगत को रक्षा करने तुम्हें प्रभु यही कर्मभूमि श्रीमंदिर जो जाऊ कौट की ना गुंडीचा मंदिर को जन्म जन्मस्थान
2: गोटे शुभ लक्षण आम देखा पाच वर्तमान सिंहद्वार चकड़े अनेक श्रद्धा बड़ ठाकुर रथ बाही नापी आग को मुह कले जदि से आग को मुह कर नहीं जाती तालध्वज रथ को तेज समस्त प्रकार सुविधा हो रथ आग को चलिए जहाँ वर्तमान आम शुभ लक्षण देखा पाच लोक मैंने बुझीगले आम के प्रकार कर्तव्य को संपादन करूँ ये समस्ते जड़े जड़े सेवक समस्ते जड़े जड़े पूजक समस्ते जड़े जड़े श्रद्धा भक्त
3: प्रभु तो क्या किपारे सी तो निधा विष्णु जीए काय मन वाक्य दिहात टेकी संपूर्ण भाव में क्षमाश्रित हो जाए प्रभु ताकु क्षमा दिंती हे बड़ ठाकुर हे बलियार भुज हे अनंत हे वासुदेव हे हल मुसल धाली हे अष्टजल पद्म जो रथ निर्मित ये अनंत नाग शिशु अनंत तमे ही अनंत तमे ही बलभद्र तमे ही बलियार भुज तमे जो भाव नहीं श्रद्धा भक्त मानू नहीं जावाई जो चिंता करुच गड़ा गड़ा तालध्वज रथ उत्कंठा आज आगे चलुची रथ मध्य आगे चलुची
2: घंटुआ मानकर घोर घर घर नाद श्रद्धा माने आग को आसी जाती तेणु निश्चित भाव महाप्रभु तांकर गंतव्य पथरे जिबे से छाड़ीदे श्रद्धा कहीं सी महाप्रभु सी होती अकर्म कर्मदायक जहाँ आम कर्म नहीं महाप्रभु आनी दे दिंती किंतु बड़ समस्या मध्य रही जो सिंहद्वार जो थाना आमर रही बागेड़िया धर्मशाला से धर्मशाला रो निकटतर रही तालध्वज रथ क्रमे क्रमे निकटतर हो जाती अर्थात दक्षिण पार्श्व को डाहाण पट को रथ माड़ी रही तेणु किपरी भाव कौशल क्रमे पुणी दांडर मझी को आनी पारिबा एवं भक्त माने से चेष्टा करुछंती सम्मिलित भाव प्रशासन भक्त एवं श्रद्धालु सेवायत समस्त भितर गोटे कार्य बर्तमान चली आम महाप्रभु रथ को बड़दाण्डर मझी पर्याय को मझी स्थान को किपर आनी पारू से चेष्टार समस्ते अच्छा आउ श्रोता बंधु आपण मैंने जापर थे बालीसाहीर से गली मुंडरु आउ गुंडीचा मंदिर पर्यंत संपूर्ण भाव नर नारायण मानकर भक्त भगवान जो पवित्र महार्घ्य मुहूर्त जो थे समस्त भितर आवेग आम जन्म जन्मांतर पाप को ये भस्म करदेबु ये नष्ट करदेबु आ महाप्रभुंकर आशीषर बड़दाण्डर धूली रथर दौड़ी को मुंडरे मारी आम पुण्य अर्जन करिबु आग को आसुछंती सुंदर भावरे
3: आगेला बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथ एवं जो मैंने हलद से देख ग्रीन सबुज रंगर जो पुलिस भाई मैंने ये तालध्वज रथ दायित्व अच्छा से मैंने आग को जाऊँगी बाँ पट को माड़िक रही धीरे धीरे मझियाड़ को आसुची तेणु आसवे निश्चय प्रभु आसवे कारण भक्त मैंने केवल छाड़िकारे ना भक्त मान गहन से जीवे भक्त जोटी भगवान जगन्नाथ से बड़ ठाकुर बलभद्र से देवी सुभद्रांगर दर्पदल रथ से सबू आज एकाकार रथ पथ भक्त समस्ते आज ये महामिलन मंच संसार रूपक बड़दाण्ड आज उभाई आज ठिया केते दिनर मनर कथा प्रभु को कहिबे हृदय कोली कहिबे हे बड़ ठाकुर बलभद्र तमे घरर मुरबी तमे कलीजुगर ठाकुर तमे आमर दुख बुज सबु दुख दूर कर दि यही भावना नहीं
2: बार मास छतु एवं एक वर्ष अपेक्षा करिछि भक्त कौ दिन आसव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से तिथि को से तार निजर समस्त कार्य को सी दूरई देती एवं मु श्रीक्षेत्र जी श्रीक्षेत्र रही श्रीक्षेत्र कार्य सब करी मु क्षेत्र जी एक क्षेत्र को आसवापी तार जो व्याकुलता थिला से वर्तमान से पाई तार प्राणप्रिय ठाकुर को केते कथा मनरे भाभी दौची आउ श्रीमंदिर जो मेघनाद पाचेरी से कड़े कड़े अनेक श्रद्धालु भक्त माने ये दिव्य लीला को दर्शन करुछंती आउ बड़दाण्डर दुई उभय पार्श्वरे जो कोठागुड़िक अछंती सेठारे मध्य तल उपर सबु स्थानरे श्रद्धालु माने आबाल वृद्ध वनिता से माने महाप्रभुंकर दिव्य लीला को दर्शन करुछंती वास्तव में श्रोता बंधु आपण माने अनुभव करुथिबे ये साधारण जीवन रो साधारण परिवार रो परिवेश रो जेतेबेले वैकुंठ रे आसी सेई परिवार रो सदस्य जने पहुंची जाए तार जो आनंद हुए तार जो मनरे जो व्याकुलता सृष्टि हुए सेई कथा ही आज बड़दाण्ड रे देखिबा को मिलिछि संपूर्ण परिपूर्ण बड़दाण्ड केवल मुंड माल भक्त मानकर जो प्रचेषा रही आम महाप्रभु को आग को नेबु आउ वर्तमान टिके ठीक मझी आड़ को आसुचंती बड़ ठाकुर तेणु बड़ ठाकुर पाखरे कोटि कोटि प्रार्थना हे नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय से महाप्रभु बड़वाड़ सामंतंकर से कला रंगर घोटक चारिज से माने मध्य आश्चर्य होती अरे पगल अरे भक्त माने एमती कहीं पार्श्व देवता माने से माने मध्य आनंदित होती अरे ठाकुर को देखिया पे एमित तमे होच आउ जे सारथी अच्छा मतली से मध्य अबाकबा हो जाती अरे भक्त मानकर कौन ये भावना समस्त भितरे आउ जी आसी रथाधिप महाप्रभु जी बलभद्र आ रामकृष्ण सी तो भक्त को पाई सी मध्य विहोल भाव विहोल हो जाऊँच कर्तुम अकर्तुम अन्यथा बा कर्तुम से महाप्रभु तुम पाखरे कौन बा असंभव कौन बा असंभव सुंदर भाव
3: केड़े सुंदर भाव ଘୋର ଘର୍ଘର ନାଦରେ ଚତୁର୍ଥୀକ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଚାଲୁଛି, ରଥ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କେତେ ଆକୁଳତା, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଭକ୍ତ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମୋହନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁ ଟାଣିବୁ, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି
2: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ପାଦାରବିନ୍ଦ ଭଜନ୍ତି ହଲୋକେ ପରେ ବାଣମ ନତାବତ ସୁଖମ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତାପନାଶମ ପ୍ରସିଦ ପ୍ରଭୋ ସର୍ବଭୂତାଧିବାସମ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମ ମନ ମଜି ନ ଯାଇଛି, ଲଗ୍ନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁକ୍ତି କାହିଁ। ତେଣୁ ଉମାନାଥ, ହେ ମହାରୁଦ୍ର, ହେ ବଳଭଦ୍ର, ହେ ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମ ଚରଣରେ ଆମର ମତି ରହୁ, ଆମର ଗତି ରହୁ, ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁଦ୍ରାରେ ଆମକୁ, ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଅ। ହଳ ମୁଷଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଧ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅହଂ ବୈଶ୍ୱା ନରଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣୀନାମ ଦେହମାଶ୍ରିତ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମ ଉଦରରେ ବୈଶ୍ୱାନର ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଉଦରରେ ଯେଉଁ ଚର୍ବ୍ୟ ଚଷ୍ୟ ଲେହ ପେୟ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ଚାଷରୁ ପାଇବା, କୃଷିରୁ ପାଇବା, ଭୂମିରୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଅନ୍ନାତ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟାତ୍ ଅନ୍ନ ସମ୍ଭବ। ସେଇ ପର୍ଜନ୍ୟ, ସେଇ ବୃଷ୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଶୁଭ ଦିନରେ, ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଯେପରି ମନେ ହେଉଛି, ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଲଙ୍ଗଳ, ଅଛି ମୁଷଳ, ହଳ ମୁଷଳ, ମୁଷଳରେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କୌଶଳ କ୍ରିୟା ସେ କଥାକୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ କ୍ରିୟା, ମୂଳ ଚିହ୍ନ, ସେ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଫାଳଟିଏ ଲାଗିଛି, ଯିଏ କର୍ଷଣ କରୁଛି, ସେ ଲଙ୍ଗଳ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ମୂଳଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଯାଇଛି କିପରି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇକରି ଯିବେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା କରିବାର ଯେଉଁ ଥିଲା, ହେଲେ କର୍ମଣି ଆମେ ସିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଜଗତ ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଜଗତ ଆତଜାତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ଯିବେ, ମାଆ ସୁଭଦ୍ରିକା କିପରି ଆସିବେ? ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବା କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମୟ
3: ଆଗେଇବେ, କାରଣ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଆଠଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଣମ୍ବାରୀ, ଗଦାନ୍ତକାରୀ, ହରିହର,
2: ନଅଟି ନଅଟି
3: ବାସୁଦେବ, ନାଟାମ୍ବର, ଅଘୋର, ତ୍ରିପୁରାରି ଶିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ତାଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି,
2: ନଅ ଜଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ହଁ,
3: ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି,
2: ନଅ ଜଣ ପ୍ରତିଟି ନଅରେ, ପ୍ରତିଟି ରଥରେ ନବ ନବ ଦେବତା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି।
3: ସେଇମାନେ ହିଁ ଟାଣି ନେଇଯିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ସାରଥି, ଏ ରଥକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତଳି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଳିଲା ଗଳିଲା ରଥ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି। ସେଇ
2: ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘୋର ଘର୍ଘର ନାଦ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ନାନୟର ଭେଦ ଇଷ୍ୟତେ, ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ঘণ্ট ঘোর ঘর নাদ যে চৌদটি চকা সে মধ্যে এই পবিত্র পাবন বড়দাণ্ডরে পত্ত পাবন যাত্রা কু সম্পন্ন করিবা পাই গড়ি চালিছন্তি বড় আনন্দর যিয়ে যেউঠারে শ্রোতা বন্ধু আপন দূরতা অনুভব করন্তু নাই সমস্তে যিয়ে শুনি পারুছন্তি বড় ঠাকুরঙ্ক প্রীতি উদ্দেশ্যে হরিবোল ধ্বনি দিয়ন্তু হুলহুলি ধ্বনি দিয়ন্তু প্রার্থনা করন্তু মহাপ্রভু বর্তমানে আমার যে বড়দাণ্ডর মধ্যম স্থানক আসি যাই ইতি অবসরের আমি প্রথম কেন্দ্রর যে মাঙ্ক রথ আসা ব্যবস্থা করা যাচ্ছি আমি আপন মানুষ প্রথম কেন্দ্রক নিয়ে যাচ্ছু জয় জগন্নাথ জয় বলভদ্র জয় মা সুভদ্রা।
4: বর্তমান আমি দেখুছু সিংহদ্বার সম্মুখে বর্তমান মা দেবী সুভদ্রাঙ্কর রথ জগজ্জননী সংসারর তরিণী জয় ভদ্রে সুভদ্রতম সর্বেশাম ভদ্রদায়িনী ভদ্র ভদ্র স্বরূপাতম মহামায়ী নমস্তুতে। যি মহামায়া সাক্ষাৎ যোগ রূপা যিয়ে হচ্ছেন প্রকৃতি সহিত পুরুষঙ্কু যিয়ে যোগ করে থাকে সেই যোগ মায়াঙ্কর দেবী দলন রথ বা যা কি কুহযায় দর্প দলন রথ যা পদ্মধ্বজ রথ মধ্যে কুহযাই থাকে কারণ মাঙ্কর রথর যে ধ্বজা সে ধ্বজার পদ্মর চিত্র অঙ্কন করা যাইছি এবং এতৎ সহিত মা ভুবনেশ্বরী মধ্যে সে ধ্বজার বিরাজমান করেছেন্তি সেই রথঙ্কর মাঙ্কর রথক সুন্দর ভাবরে টাণি নেবা পাই দৌড়ি মান সংযোগ করা সরিলানি যা তাঙ্কর রথর যে দৌড়ি বা রজু যা হচ্ছন্তি স্বর্ণচূড় এবং তাঙ্কর মা রোচিকা মোচিকা জিতা অপরাজিতা যে রথর অশ্ব তাকু মধ্যে যে অশ্ব মধ্যে মাঙ্কর রথরে যোচা সরিলানি আউ অপেক্ষা করিছন্তি কিপরি ভাবরে বড় ভাই বলভদ্রঙ্কর রথ আমার গোটে নিয়ম রয়েছে বড় ভাই বলভদ্রঙ্কর রথ যে পর্যন্ত নির্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ রজাঙ্কর নর ন ডেইছন্তি সে পর্যন্ত আউ গোটিয়ে রথ টণা যাই পারিব নাহিঁ ইয়ে তো কহুছি গোটিয়ে কারণ আউ গোটিয়ে কারণ মধ্যে এতে সংখ্যক লোকার মানে বা লোকারণ্য হেইটি এই অঞ্চল লোকমানে এতে সংখ্যরে এটি আসি পৌঁছিছন্তি মা সুভদ্রাঙ্ক রথরে যাহাকু কি রথকু টাণিবা সহিত কালিয়া সান্তে মধ্যে রথরে রহিছন্তি সে কালিয়া সান্তঙ্কর রথ তাপরে টণা যাব পছরে আসবে গহল চহল লগাইবাই সেইপা সব ভক্তঙ্কর আজি এ কালিয়া সান্তঙ্কর রথ পাখরে সেমানে একত্রিত হয়ে সারে অপেক্ষা করেছেন খালি নির্দেশ মাঙ্কর রথ টিকিয়ে আগকু গলা পরে জগন্নাথঙ্কর রথ টণা যাব কিন্তু আজি প্রতীয়মান হচ্ছে যে টণা হব কি না তাহা মধ্যে গোটিয়ে সন্দেহের রয়েছেন্তি তথাপি মন ভিতরে আশা আউ এপটে আমি দেখুছু সংকীর্তন মাধ্যমে এ মঠর আসুছেন মঠ বিভিন্ন মঠর সংকীর্তন পরম্পরা রয়েছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে সংকীর্তন পরম্পরা বা পরম্পরা কু শ্রীক্ষেত্রে করেছিলেন কারণ প্রেম ভক্তি মাধ্যমে পাইবা হি সে সংকীর্তন মাধ্যম নাম ভজন কীর্তন মাধ্যমে ভগবান পাইবার যে উপায় তাহা চৈতন্য মহাপ্রভু 1500 খ্রিস্টাব্দে 1509 যেতবে আসিলে সেই সময় এ করে সেইপরি ভাবে আজ মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় মঠ সম্প্রদায় তরফর সংকীর্তন হচ্ছেন উদণ্ড নৃত্য মধ্যে হচ্ছে আমি দেখুছু শ্রদ্ধাড়ু ভক্ত মানে সিংহদ্বার সম্মুখে এতে সুন্দর ভাবে শৃঙ্খলিত ভাবে কিন্তু অপেক্ষা করছেন কেতবে নির্দেশ দেবে আউ রথ টণা কার্য আরম্ভ হব আরক্ষী বাহিনী মানে মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সুসজ্জিত হয়েছেন রথক শৃঙ্খলিত ভাবে কড়ন ভিতরে কৌশি লোক বাহার লোক বিনা পাস ধারী লোককে ভিতরকু প্রবেশ করা সেমানে মধ্যে দৌ না সুযোগ সেপাই প্রভুঙ্কর এই লীলারে এমতি লীলা চালিব তেবে মু বর্তমান নিয়ে যাচ্ছি আমার নিকটে থাকা ডক্টর শান্তনু রথ মহোদয়ঙ্ক নিকটক যে প্রভুঙ্কর এই গাথা আউ কথাকু অধিকারু অধিক আপন মানক পাখে বর্ণনা করিবে জয় জগন্নাথ।
0: ধন্যবাদ ডক্টর কল্যাণী নন্দী মহোদয়া। আমি রথযাত্রার ধারা বিবরণী এপর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবরে সকাল 7:30 আরম্ভ করি বর্তমান সন্ধ্যা 6টা সময় উপগত হলানি
5: आमे आपण को समस्त चेष्टा करी समस्त प्रकार भाव तथ्य समर्पण सहित आमे आपण को महाप्रभुंकर ए पवित्र पावन रथयात्रार धारा बरणी शुणापी चेष्टा करूँ एवं आपण अवगत अच्छा जे सका साढ़े सातटार आरंभ कर किभली भाव में घटना मान सब घटी चली महाप्रभु लीला रचना कर किभली भाव में बड़दाण्ड में आसी उपस्थित होती ये वर्ष को थे ये गोटे जात्रा एवं ये जात्रा महत्व यह हूँ जे ये केबे गोटे उड़ीसा जात्रा होकरी कि पुरीर जात्रा होकरी एवं आरी की उड़ीसा जात्रा होकरी ये ना एवं भारतर विभिन्न स्थान में बहु जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हला भारत बाहर बहु जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हला से विभिन्न जगार विभिन्न जलवायु को लेकर विभिन्न सुविधा को लेकर जो रथयात्रा होकरद सृष्टि तेणु से बिवाद सृष्टि हो जहाँ भी हो वर्तमान जे जगन्नाथ आ पुरी क्षेत्र में सीमाबद्ध होके नहांते समग्र विश्व में से परिव्याप्त होती महाप्रभु स्वयं परिव्याप्त होती सहित चेतना परिव्याप्त होती संस्कृति परिव्याप्त होती जगन्नाथ संस्कृति जो महनीयता ताकि गोटे संक्षिप्त परिसर में थिला गोटे सीमाबद्ध परिसर भितर थिला ताहा एबे असीम परिवेश रे जाइकिरी उन्मुक्त हो जाइछि समग्र विश्व जनता पाखरे तेणु एटा ओडिया जातिर भाग्य एटा महाप्रभुंकर अपार करुणा एबे आमे कहू जे श्रीक्षेत्र रे महाप्रभुंकर जहाँ इच्छा ताहा ही विश्व इच्छा भाव में रूपांतरित हुए तेणु विश्व रे आज महाप्रभु को लेकर जहाँ घटुची ताहा मध्य महाप्रभुंकर इच्छा बोली आमे एक प्रकार ग्रहण करिवा को पड़िबो तेणु गोटे आमर लाभ होती जे आज जगतर प्रत्येक स्थान लोक मैंने विश्वर प्रत्येक स्थान लोक मैंने जगन्नाथ को जानुंती जगन्नाथ संस्कृति को जानुंती सहित जगन्नाथ संस्कृति महनीयता जानुंती ये कम बड़ कथा नुहे आमर ओडिया जाति जो बंगवंशी राजा मैंने दक्षिण रु आसी ये श्रीक्षेत्र मंदिर स्थापना कले महाप्रभुंकर सेवा पूजार विस्तार करेले एवं स्वयं आदिशंकर आसिकी ये धाम प्रतिष्ठा कले सनातन धर्मर गोटे प्रसिद्ध क्षेत्र भाव में ये श्रीक्षेत्र प्रतिष्ठा हला ये सब कालक्रमे घटी हजार देढ़ हजार वर्ष भितर ये जो विकसित होती जगन्नाथ संस्कृति एवं जो चेतना विकसित हो चेतना बर्तमान विश्व चेतना आपण जानते श्रोता बंधु महाप्रभुंकर गोटे बड़ गुण हूँ बा जगन्नाथ संस्कृति गोटे बड़ महान संस्कृति होची जे समावेशी संस्कृति जहाँ को आम इंग्राजी में आजिकल इनक्लूसीविटी कहूँ जे इनक्लूसीव कल्चर बोली कहूँ से महाप्रभु जगन्नाथंकर डेढ़ हजार दि हजार वर्ष जिते बड़े जगन्नाथ संस्कृति उपासना हला महाप्रभु को उपासना हला से सर्व जन समावेशी गोटे संस्कृति ये विकसित होती जो समस्त को लेकर विश्व चलो समस्त को लेकर आम चल जो विचार जहाँ गोटे आधुनिक विचार बोली आम कहूँ से आधुनिक विचार आदौ नुहे से गोटे सनातन विचार एवं से सनातन विचार महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र प्रदर्शित होती प्रमाणित होती प्रतिष्ठित होता कम बड़ कथा नुहे तेणु आज से घोषयात्रा अवसर में यही बार्ताटा समग्र जगत को जाऊँगी आकाशवाणी गोटे परम सौभाग्य जे 1948 मसीहा ठारु आरंभ करी 2026 मसीहा 79 वर्ष धरी सुदीर्घ 79 वर्ष ये गोटे आयु काल ठारु आहुरी अधिक दीर्घ तेणु गोटे आयु काल को अतिक्रम करी गोटे दीर्घ काल धरी गोटे अनुष्ठान यही रथयात्रार धारा बरणी शुणे चली आपण मानक तेणु आपण मान श्रद्धा अनुराग नथिले कौन आकाशवाणी एक कथा करता जदि आपण मैंने शुणु न था आपण मैंने जदि शुणिकी मतामत दौन था आम जो ह्वाट्सअप आपको देचु से ह्वाट्सअप्रे आपण के श्रद्धा अच्छी केते आनंद अच्छी आकाशवाणी प्रति केते अनुराग अच्छी जे आपरे आमको प्रश्न पचारूँ आमर सीमित विद्याबुद्धि भितर आम आपण प्रश्न मानक समाधान करने को चेष्टा करो अंतरंगता आकाशवाणी और श्रोता मान भर जो अंतरंगता से अंतरंगता ही आकाशवाणी को 1948 मसीह यही 2026 मसीहा पर्यंत टाणी आने मु भावी जो पर्यंत समय थी जो पर्यंत अनुष्ठान माने थे जो पर्यंत श्रोता माने थे जो पर्यंत बेतार जंत्र थी से पर्यंत आकाशवाणी महाप्रभुंकर ए महार्घ लीला को आपण मानक पहुँचार सुजोग केबे हाथ छड़ा करें ना यहाँ गोटे परम आशीर्वाद महाप्रभुंकर आकाशवाणी आम तो सामान्य मात्र आमे सबू आज अच्छू काली हुए तो किए नथिबु किंतु आकाशवाणी गोटे अनुष्ठान भाव जो सेवा जो समर्पण भाव में ये सेवा निरंतर भाव में निरवच्छिन्न भाव में दे आसी
0: ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଭାଗୀ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ହେଉଥିଲା, 2015 ମସିହାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରସାରଣ କରିଛି। 2015କୁ 2026 11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ବିବରଣୀ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯାନ୍ତ୍ରିକୀ ବିଭାଗର।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं

0: सुनीतली रमणर
1: इयम्
0: आकाशवाणी
1: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षावधौ सुरक्षा आर्थिक संकटं सम्मुखीकरणाय बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रेषु दृढ क्षेत्रीय सहयोगस्य भारतेन महती अनिवार्यता प्रख्यापिता। यत्र सीमाः न केवलं सुरक्षिताः अपि तु सुसंपर्क युताः स्युः, तत्र विकासः राष्ट्रीय सुरक्षा च एकेन एव मार्गेण प्रवर्धते इति रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सप्रश्रयम् अवोचत्। नवम कक्षायां तृतीय भाषा नियमस्य प्रवर्धनेन छात्रेषु मानसोद्वेगं विलोक्य पञ्चम षष्ठ कक्षयोः एव तस्य समावेशाय सर्वोच्च न्यायालयस्य श्लाघनीयो परामर्शः। पुण्यभूमौ पुर्यां सुदृढ सुरक्षा वलये वैदिक मन्त्रोद्घोषैः सह श्री जगन्नाथ रथयात्रायाः मंगलमयः शुभारम्भः। अपि च भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एक दिवसीय स्पर्धा अद्य साम्प्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। अथ वार्ताः विस्तरेण।

0: भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षावधौ सुरक्षा समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय दृढ क्षेत्रीय सहयोगस्य अनिवार्यतां प्रत्यपादयत्। तेन सबलं प्रोदीरितं यत् बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रैः परस्पर कल्याणाय एकीभूय संकल्पाः करणीयाः। सः अद्य नवदेहल्यां समुपस्थितानां बिम्स्टेक देशानां राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखाणां पञ्चमं सम्मेलनं सम्बोधयनासीत्। श्री डोभालेन स्पष्टीकृतं यत् सम्प्रति समग्रं जगत् विविध संघर्षैः भूराजनैतिक अनिश्चितताभिः च ग्रसितं वर्तते। तेन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलासु विघ्न निवारणाय आर्थिक आह्वानानां निराकरणार्थं च बिम्स्टेक सदस्य देशानां मध्ये सहयोगस्य आवश्यकता समुपस्थापिता। भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सविशेषं प्रख्यापितवान् यत् प्रशासनस्य अयं श्लाघनीयो प्रयासो वर्तते यत् तादृशस्य नूतन भारतस्य निर्माणं भवेत् यत्र राष्ट्रस्य सीमाः न केवलं सुरक्षिताः स्युः अपि तु ताः सुदूर क्षेत्रैः च सह सर्वोत्कृष्ट सम्पर्क तन्त्रेण अपि संयोजिताः स्युः। तेन स्पष्टीकृतं यत् प्रशासनं विकासं राष्ट्रिय सुरक्षां च एकेनैव मार्गेण सहसा अग्रे नेतुं दृढ संकल्पबद्धमस्ति। नवदेहल्यां सीमा मार्ग संघटनस्य प्रौद्योगिकीय संगोष्ठ्याः महनीयं मञ्चं सम्बोधयन् असौ प्रोक्तवान् यत् उन्नत मूलभूत संरचना सर्वदैव एकस्याः विकसित सभ्यतायाः मुख्यं लक्षणं मन्यते। तेन सबलं प्रोक्तं यत् अद्य या मूल संरचना देशे निर्मीयते सैव आगामिषु वर्षेषु भारत सभ्यतायाः नूतनं स्वरूपं परिभाषयिष्यति। रक्षामन्त्रिणा दृढं व्याहृतं यत् प्रशासनस्य अन्तिमं लक्ष्यम् इदमेव अस्ति यत् देशस्य कस्मिन्नपि अति दुर्गमे सुदूरे वा क्षेत्रे निवसमानः कश्चिदपि नागरिकः राष्ट्रस्य मुख्यधारातः विच्छिन्नः कदापि न अनुभवेत्।
1: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और वीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि वीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: सर्वोच्च न्यायालयः अद्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः पाठ्यक्रमान्तर्गतं नवमकक्षायां तृतीय भाषायाः समावेशं प्रति महतीं चिन्तां प्रकटितवान्। न्यायालयेन सप्रश्रयम् अवलोकितं यत् एतेन नवमश्रेण्याः कोमलमति छात्रेषु मानसिक भारः नितरां वर्धिष्यते। न्यायालयेन श्लाघनीयो परामर्शः दत्तः यत् इयं भाषा पञ्चमकक्षायां षष्ठमकक्षायां वा प्रवर्धनीया येन छात्राः सुलभतया तां ग्रहीतुं समर्थाः स्युः। न्यायाधीशयोः वी बीर नागरत्नायाः आर महादेवनस्य खण्डपीठेन केन्द्रप्रशासनं प्रति मौखिकरूपेण आदिष्टं यत् नवमकक्षायां तृतीयभाषायाः नवीनः भारः छात्रेषु न आरोपणीयः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair.gov/newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्यस्य पवित्रायां पुरी नगर्याम् अद्य उत्कृष्टाध्यात्मिकोत्साहः वरिवर्ति। विश्वप्रसिद्धा भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा अद्य धार्मिक विधि विधानैः अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबन्धैः च सह महता आध्यात्मिकोत्साहेन समनुष्ठीयते। प्रातःकालादेव तीर्थनगर्यां निरन्तरं जायमानां वृष्टिमतीत्य लक्षाधिकाः श्रद्धालवः अविचलित श्रद्धया मुख्यमार्गे एतत्

आकाशवाणी कटक आरंभ करुचु कार्यक्रम विकास मंत्र प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महारणा उपस्थापना सुकांति महांती आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रस्तुत।

0: ଶୁଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସାଥୀ। ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायो फोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में,

0: हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि

0: वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमे कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत

0: और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between Indian hosts England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the US. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
2: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
1: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects.

लीजिए अब सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में सुना। संगीत तैयार किया था आडू बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

0: तू ही करा।
1: साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गई। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

0: is wrong. Let me do it.
1: साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, देख

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: धर्य धर इंद्र दुम्न घेन हे सांत्वना शोक त्याग कर मनु जाऊछि मु श्रीहरि को पासे पचारिबी तांकु एही कुटर कारण
1: जाओ हे देवर्षि तुमे न फेरिबा जाय अपेक्षा रे बसिथिबु आमे दुहे एही नीलगिरी तळे शोकातुर अश्रु नयन
0: नारायण नारायण नारायण

रोष त्याग कर लक्ष्मी ठाकुराणी, तुमे संसार ठाकुराणी, तुमे रागिले रुषिले सारा संसार हाहाकार पड़ एबे सुन रथजात्रा कथा मुही कहुचि बुझाई। सोई अछि राजा इंद्रदुम्न, स्वप्ने से ही सुनिब मो कथा। आम रथजात्रार से करी बंदोबस्त, रखिजीव अक्षय किरती। राणी गुंडीचार पूर्ण हेब मनोवांछा, ताहापाई आरंभिली एही रथजात्रा। एही रथजात्रा विख्यात होइब यहा श्री गुंडीचा नामे।

0: श्री श्री श्री गजपति पुरुषोत्तम देवंकर जय हो।
1: महामंत्री, श्रीगुंडीचा यात्रा निकट हे आसिला। महाप्रभु जगन्नाथंक कृपारु एथरक समस्त शुभ अनुकूल करी रथर निर्माण कार्य आरंभ करा जायछि। वैशाख मास शुक्ल तृतीया रोहिणी नक्षत्र दिन मु संकल्प करथिले, आउ सेय अनुसारे समस्त कार्य सुचारु रूपे संपादित हेई उपयुक्त रथ काठ संग्रह करा हेछि। मु अत्यंत प्रीत जे वर्धकी गण सुंदर भावरे बड़दाण्डरे रथ निर्माण करुछन्ति। एही मनोरम यात्रारे कांची राजजेमा पद्मावतींक सहित परिणय सूत्रे आबद्ध हेई मोर नीलाद्रि बिहारींकर सेवा करिबार वासना जाग्रत हेछि।
0: गजपति अनुमति देले मो कांची राजांग निकटकु विवाह प्रस्ताव देई दूत पठेइबि।
1: पठान्तु महामंत्री, दूत शीघ्र संवाद बहन करि आणिले विवाहर आयोजन करा जिवो। जय जगन्नाथ।